करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवेगा। जब परमात्मा की कृपा होगी जो

0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: देवादि देव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: इन द रामायण होली बुक रामायण
1: रामायण संत könyvében
0: तुलसीदास जी महाराज इज राइटिंग
1: तुलसीदास जी महाराज azt írja
0: जो इच्छा कर ही मन माई हरि कृपा दुर्लभ नहीं दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस व्हाट तुलसीदास जी सेड
1: ez तुलसीदास जीनक egy csodálatos mondata
0: well he said whatever you wish everything is possible nothing is impossible
1: azt mondta bármit kívánsz lehetséges semmi sem lehetetlen
0: how good
1: milyen jó
0: my god we got everything
1: istenem mindenünk megvan
0: under one tree we got all the nests
1: egy fa alatt van az összes fészek
0: all mushrooms what we were searching
1: az összes gomba amit kerestünk
0: we found under one tree
1: egy fa alatt volt meg
0: Iccha. Iccha, what is iccha?
1: Mi az iccha?
0: Wish.
1: Kívánság.
0: Desire.
1: Vágy.
0: What would you like

0: की जय।
1: देवेश्वर महादेव
0: की जय।
1: माधव कृष्ण भगवान
0: की जय।
1: सत्य सनातन धर्म
0: की जय।

0: महाप्रभु जी
1: की जय हो।
0: श्री सियालकपुरी जी महादेवा की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
2: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुषा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति ही शांति शांति ही।

नित्य प्रति सर्व प्रकार से बड़े उच्च वृत्ति से विशुद्ध वृत्ति से जो उसी ब्रह्म रूप में लिपायमान रहते हैं उन महान सद्गुरु देव के चरण के कमे कोटि सत नमस्कार करके ये जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति गोति सह सो हम स्वाहा ओम ह्यम हम सो हम स्वाहा ओम ह्यम हम सह सो हम स्वाहा सर्वर्दे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे दीन कर रहा हूँ वो हमारे सारे मनोरथ को सिद्ध करे ओम ओम अग्नेर वाक्मंसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ओम अग्नेर वाक्मंसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ओम ह्रीं ऐं त्रैलोक्य मोहिनी चामुंडा महादेवी सुरासुर वंदनी ह्रीं ऐं स्वाहा ओम क्रीं कानेन्दी भेदनाय ओम अग्नैर्वाक्मंसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ओम अग्नैर्वाक्मंसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा ीशम परानम महाकाल कालम कृपाण गुणांगार संसार

0: परमादरणीय, परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं,
1: आप ट्रांसलेट करो।
2: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he gave, he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhya Mahamalesha Swami Maheshwaranandji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में, ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
2: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandaleshwar ji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Maheshwaranandji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: Aur mujhe aisa lag raha hai कि स्वामी जी की ये साधना, ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी, आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे।
2: And he thinks that this tapasya, this kind of sadhana will bring millions of people in the future.
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है।
2: In Indian tradition, there is a great importance of guru.
0: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं,
2: शंकराचार्य जी says in his भाष्य, in his commentaries,
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है।
2: If somebody is greater than God, then this is guru.
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है,
2: Nobody saw God.
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं।
2: And guru is in front of us.
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं।
2: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
0: First, सबसे पहली मानव का जन्म.
2: First is the being born as a human.
0: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति.
2: Reaching the divine consciousness.
0: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग.
2: And third is the satsang with the great saints.
0: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता।
2: We believe that human life is not available all the time.
0: मनुष्य जीवन में दो विशेषताएं हैं, एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है, मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है।
2: There are two things important in human form. One is the intellect which no other living beings have.
0: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है, ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है।
2: And we are free to do whatever things, whatever karmas we want to do. So intellect and karmas are something specially made for humans.
0: हमें सबको समय बहुत कम मिला है, इसी समय का हमें सदुपयोग करना है।
2: We got a very limited time and we have to do good in this time.
0: हमारे यहाँ वेद में कहा है, इह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यहाँ वेदिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरा प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक, उस परम सत्य तक पहुँच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
2: In Vedas it says that if you are born as a human and you have to reach to this enlightenment, otherwise will be a lot of suffering.
0: उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं, जैसे परम श्रद्धे स्वामी महेश्वरानंद जी ने लाखों हजारों लोगों को इस मार्ग पर लगाया और मार्ग दिखाया.
2: So to show this path, we have great saints, and one of that is our Gurudev Vishwa Guruji, who taught hundreds of thousands of us on the path how to realize oneself.
0: इसलिए हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व बताया गया है. वेद में कहा है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य ही कथते अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः. जैसी हम लोग श्रद्धा गॉड पर, ईश्वर परमात्मा पर है, वैसी ही श्रद्धा हमें गुरु पर भी होनी चाहिए.
2: So in Vedas it said that as much as we believe in God, the same amount of belief we should have to our guru.
0: इस आश्रम की परंपरा बहुत प्राचीन और बड़ी पवित्र परंपरा है. परम श्रद्धेय स्वामी अलकपुरी जी महाराज, स्वामी देवपुरी जी महाराज, दीप नारायण प्रभु जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी महाराज और श्रद्धेय विश्व गुरु जी महाराज.
2: So our parampara, our lineage is very holy and very old. It starts from Alakpuri ji, continuing to Devpuri ji, Mahaprabhu ji, Holy Guru ji, and now Vishwa Guru ji.
0: इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं, आप सबको ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है, ऐसे गुरु की शरण में आप आए हैं.
2: You are very lucky to get such a guru and be protected in his shelter.
0: इसलिए इस गुरु के माध्यम से ही आप उस परम सत्य तक पहुंच जाएंगे और आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा.
2: And because of that, you will be able to reach your destination, the final liberation, and you will be free.
0: हरि ओम तत्सत. हरि ओम
2: तत्सत. Short and sweet. Deep Narayan Bhagwan ki jai. Swami Atmanand ji Maharaj ki jai.
0: Swami Gyaneshwar Puri ji Maharaj ki jai.
2: This was, I think, it was like an introduction to the lecture, because I know that he speaks minimum for 3 hours. So this was very short and sweet. In India, there is a saying, Gagar Me Sagar. It means that in a small pot, you fill the whole ocean. So the essence of the human life, why we are here in Om Ashram, he just explained. So I will just continue a little bit, 1-2 shlokas from Ishavasya Upanishad. As you remember, Ishavasya Upanishad is first Upanishad from its, it can be found in Yajurveda. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ishavasyamidam Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagatena Tyaktena Bhunjita Magridaha Kasya Svidhanam Kurvaneve karmani jiji vishechatam samaha evam tvai nanyate tosti na karma lipyate nare asurya namate loka andhena tamasavritaha tanste pretyabhi gachanti ye ke chatmahano janaha ane jade kammana sojaviyo naina deva apnuvan purva marshat tadhavato anyanatyeti tishta tasmina po matarishva dadati Tade jati tane jati tadure tadvantike tadantarasya sarvasya tadu sarvasya se bahyataha yastu sarvani bhutani atmanyavanu pasyati sarva bhuteshu chatmanam tato na vijugupsate yasmin sarvani bhutani atmaiva bhudvijadaha vijatanataha tatrako moha kaha shokaikatvamanu pasyataha. So we reached till the 5th shloka, and I will just tell the short of the 6th and 7th shloka. Yastu sarvani bhutani atmanyeva anupashyati. So Ishavasya Upanishad, first three mantras, it gave us the moral and ethical principles, Then it started to describe the God, Atma, or divine energy. So the person who sees all beings in itself, and he sees self in all beings, he cannot hate.

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्ते यम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति माने धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस,
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरती, पकड़।
1: So this is like when Vishwaguruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: गुरुजी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है।
1: So whatever the Vishwaguruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: उस पर पकड़ रखना,
1: you have to follow,
0: इसको धीरती बोलते हैं।

0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए.
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड.
0: दृष्टि क्षमादमस्तेयम् प्राइमरी में है किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना. नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा.
1: द थर्ड स्टेप इज नो नॉट स्टील. व्हाटएवर मनी थिंग्स और समथिंग यू हैव दे शुड नॉट स्टील.
0: पवित्रता,
1: प्यूरिटी,
0: पवित्रता बहुत जरूरी है. मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं. क्योंकि वो लाते हैं एक्सक्यूज मी वेज नॉन वेज वेज नॉन वेज.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मैंने शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृति क्षमा दमयस्तेयम् शोचम् इन्द्रिय निग्रहः. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें. ऐसा खान पान, आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट, ड्रिंक, think, listen, or whatever we do should be in a such a way that our life grows, that we are going upwards in the upper trajectory.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है, आपका आहार शुद्ध होगा.
1: इन बृहदारण्यक,
0: एक मिनट, आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो सत्वशुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: इन बृहदारण्यक उपनिषद सेज, इफ योर डीड्स एंड फूड इज क्लीन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाटएवर विश्व गुरु जी इज ट्राइंग टू टीच यू.
0: धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम ग्रस्त लक्षणम. धीर विद्या, बुद्धि, माइंड, इसको बुद्धि को सदुपयोग में लाना चाहिए. धी बनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी बनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड, इट शुड बी प्योर, एंड इट दिस हैपेंस फ्रॉम द फूड.
0: विद्या,
1: नॉलेज,
0: नॉलेज, जिसको नॉलेज कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं, सा विद्या या विमुक्त ही, जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे, उसका नाम है विद्या.
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू, व्हाट डजंट कवर यू और मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं आप.

0: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
1: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो.
0: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
1: ये कोर्स आपका प्राइमरी का 15 मिनट में पूरा हो गया.
0: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
1: एक ही आदमी के लिए, एक ही साधक के लिए, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
0: सो फॉर एनी साधका, एनी भक्ता, एनी डिसाइपल, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, ऑल दीज प्राइमरी थिंग्स आर नेसेसरी एज अ बेस.
1: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा अलग नहीं है. एक ही रोड के अलग अलग नाम.
0: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling gyan, somebody is calling this or that. There are no different roads.
1: Bombay Surat road, primary. Surat, Baroda, middle. Baroda, Ratlam, high. Ratlam,
2: he's telling the map of India.
1: एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत, बम्बई सूरत रोड नाम हो गया. और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
0: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत, दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड. व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
1: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte hai.
0: The middle school is yog.
1: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़ के पास होना.
0: सो इन द योगा देयर आर 8 बुक्स इन विच यू हैव टू स्टडी एंड देन पास.
1: यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक. यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति, नियमयति, दंडयति, स्वान, अपने को नियमित करना. उस पुस्तक का नाम है नियम.
0: द बुक विच टेल्स अस हाउ टू कंट्रोल आवर सेल्व्स इज कॉल्ड नियम.
1: नियम, यम अपने को रोकना.
0: यम इज द बुक विच टेल्स अस हाउ टू स्टॉप आवर सेल्व्स.
1: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो नियम हो गया.
0: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स, व्हेन योर
1: नियम मीन्स कानून को पास पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
0: टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स टू पुट इट इन योर लाइफ, दिस इज कॉल्ड नियम.
1: यम नियम के बाद में आसन है.
0: After that is
1: yasana. बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है

0: जिसको प्राणायाम बोलते हैं, हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम। और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन।
1: So the third book, Asan, tells us how to keep our body clean and how to make it strong and so on. And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: आसन से आपकी बॉडी शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर पांच ईयर है वो पांच ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए सामान की मटेरियल की सामान की।
1: So like the asanas purify the body, make it clean, the same way the pranayama does for all these five pranas, five types of air, which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रत्याहार आता। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है शॉर्ट एंड स्वीट, समझ गए? प्रत्याहार माने अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टैक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं।
1: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड।
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम। फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते, आसन प्राणायाम। फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है।
1: So nowadays in the world it's very famous, the yoga, it's only mentioning just asanas and pranayamas, what is good for the body, but yama and niyama, the rules of outer and inner behavior that nobody tells.
0: आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते।
1: So after the asana and pranayama, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई।
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: ये मेरा च्यवनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है। तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया, इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है।
1: So instead of pratyahara, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
0: अच्छा वो हमारा चेला है, वो इनको पता है सबको। तो उसमें ये है, अब इसके बाद में होता है धारणा। धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं।
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन।
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला है। धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला। ओ भाई,
1: सो यू लुक
0: संन्यास लेगा,
1: मींस धारणा
0: नहीं लेगा, नो धारणा।
1: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन, सो यू लुक एट माय द ढोलक पर्सन इफ ही वांट्स टू हैव संन्यासा, सो ही सेड नो थैंक यू।
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं।
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara. You are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो, तुम भी संन्यास ले लो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नो नो नो नो नो।
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi. You also take your 21 generations across this world. I said, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है।
1: So desires in this life, they are not fulfilled for this person and his concentration towards God, dedication is not there.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है। ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है, वो ध्यान बिजनेस बन गया है।
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है। लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make, it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: So if I tell you, please take the money from me and then I give you 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, which one you will take?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500 का ना, 500 का।
1: From all of this, you will take 500
0: का, ठीक है ना?
2: 2000 का
0: बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे। 200 का नहीं, कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी, नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो
1: Now we are like
0: again hand, yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती है।
1: So you can do ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्तोपि दुखेना गुरुणा न विचालयेत। तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है।
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका Remember. आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है। अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा है।
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this, after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता, संसार होता है। लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता है,
1: देयर इज अ
0: फैमिली, क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है।
1: द For any human, the life, the family, and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि। हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था, दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है। समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है, केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते हैं।
1: समाधि इज व्हेन यू फील ओनली योरसेल्फ, देयर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी, देयर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड, यू हैव कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ।
0: हमारे विश्वगुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प।
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहाँ पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है, और जहाँ की उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि।
1: So the सविकल्प समाधि is when there is a God who he understands and there is his desires what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहाँ पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि।
1: सो इन निर्विकल्पा देर इज नाइदर डिसाइपल, देर इज नो गुरु, दे बोथ मर्ज इनटू द गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा।
0: ये हो गई अब बारहवीं क्लास की, सोलहवीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे।
1: So this is 12th class.
0: अब बारहवीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं।
1: So 12th class is भक्ति।
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं, 9।
1: In the course of भक्ति there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें। बात सुनना तो केवल विश्वगुरु जी की सुनना।

0: आत्मा शक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान्मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बोले हनुमान जी महाराज की
1: जय।
0: रामचंद्र भगवान की
1: जय।
0: श्री देव पुरुषा महादेव की
1: जय।
0: श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: महाद्वानंद जी गुरुदेव की
1: जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी श्री महेश्वरानंद सद्गुरुदेव भगवान की
1: जय।
0: महामंडलेश्वर स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की
1: जय।
0: महामंडलेश्वर स्वामी विवेकपुरी जी महाराज की
1: जय।
0: सो वी आर स्टार्टिंग हनुमान चालीसा।
2: पोचिचमो हनुमान चालीसु।
0: लाइक यस्टरडे वी स्टार्टेड विद holy presence of Mahamandleswar Swami Avatar Puriji and Mahamandleswar Swami Vivek Puriji.
2: Jučer smo također počeli recitirati u društvu Mahamandleswara Swami Avatar Puriji i Mahamandleswara Swami Vivek Puriji.
0: Yeah, also many of us knows the Hanuman Chalisa. We will going to repeat it.
2: Mnogi od vas također znaju Hanuman Chalisu, možete ponavljati.

वन लास्ट वन एंड देन वी स्पीक. करो अपना वाला. हाँ वही है क्या? जय देव जय देव जय दीन शरण्य अनुपम कारुण्य. वो हम लोगों ने तो बनाया था. कौन सा आप ऐसे तो बोला था उसमें सर्च कर लेते आप.

सुदर्शन चक्री शिष्य विपाते सुदर्शन चक्रे वंदे गुरुपद संस्थानम वंदे गुरुपद संस्थानम श्री गुरुपद नख ज्योतिमणि समम।

दीप नारायण धर्म परायण, श्री दीप नारायण धर्म परायण, वंदे गुरुपद संस्थानम, वंदे गुरुपद संस्थानम।

की जय। बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय। मलयवतार आत्मा पुरुष लकपुरी जी सितपीत परंपरा की जय। देवति देव देवेश्वर स्वयंभुदेव पुरुष महादेव की जय। आराधि देव बोलिए श्री दीपनर भगवान महाप्रभु जी की जय। श्री श्री हिंदू धर्म सम्राट परमंश्री स्वामी माधवानंदपुरज भगवान की जय। श्री श्री सर्वभूमिश्व गुरुमा मंडलेश्वर परमंश्री स्वामी महेश्वरानंदपुरज भगवान की जय हो।

इति श्री महागणेश पंचरत्न स्तोत्रम् समाप्तम्। ओम रिधि सिद्धिदाता गौरीपुत्र महागणपतिदेव की जय। ओम बुढ़िये शंकर भोलेनाथ की जय। विश्व

ओम्बुलिये श्रीदी नरे भगवान की जय। विश्व गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी योगानंद जी की जय हो।

देवदिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। होली गुरु जी भगवान की जय। स्वामी महेश्वरानंद जी सर्वभूम जगत गुरु योगी राज की जय। साब ऋषि मुनि महात्माओं की जय।

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायंत योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।

हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डीजी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठात एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती हैं, एक तो उसका

0: कि अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें। जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम एकत्वम मनुपश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य हैं, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है। मत वो शांति सेवा से मिलती है, तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशावास्य मेदगुम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य स्वीदनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Delhi Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Delhi Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Delhi Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Delhi Life
1: Yoga in Delhi Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur

0: actually get treatment for allergies. All my life, I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that, friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
1: In rupees?
0: Yes.
1: Thank you. $1.
0: Did I say?
1: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahma Rishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Mishri Lal ji, Brahma Rishi, P. Thawla, Nagor.
2: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है, जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ों में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती महाद्वानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा, हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगरोगे। तो आज भी जो है महात्मा जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे। ये सब लीला उस ईश्वर की, तू ध्यान वो

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज धीरे के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी जो